0: बहनों और भाइयों, संगीत का सफर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में इंटरडिपेंडेंस यानी परस्पर निर्भरता के बारे में बात करा था। आज के एपिसोड में आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन बात करेंगे, मुझे नहीं पता इस तरह चीजें यहाँ की जाती है, इसके बारे में। इससे पहले कि दोस्तों हम ये एपिसोड शुरू करें, सुनते हैं ये गीत। और ये गीत है हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, और फिल्म सीता और गीता। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी बर्मन, और इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे,
1: घटा के संग संग,
2: संभलना।
1: हवा के

बहनों और भाइयों, कुछ वैज्ञानिकों के एक समूह ने 5 बंदरों को पिंजरे में रखा और पिंजरे के बीच एक सीढ़ी थी। सीढ़ी के ऊपर केले रखे हुए थे। जब भी कोई बंदर केले लेने के लिए सीढ़ी चढ़ता है, बाकी 4 बंदरों को ठंडे पानी से भिगाया जाता था। यह सिलसिला जारी था। तो दोस्तों, एक्सपेरिमेंट को यही खत्म करते हैं और सुनते हैं ये गीत, दिलबर दिल से प्यारे, फिल्म कारवा, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार RD बर्मन, और इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

तो दोस्तों यह ठंडे पानी से भीगना कुछ देर तक चलता रहा। अब हर बार जब एक बंदर सीढ़ी पर चढ़ता है तो दूसरे बंदर उसे पीटते हैं। तो बहनों और भाइयों, जब भी बंदर सीढ़ी पर चढ़ता है तो पिटाई जारी रहती है। कुछ समय के बाद कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, दिल तड़प तड़प के कह रहा है आबिजा। फिल्म मधुमति, गीतकार शैलेंद्रा, संगीतकार सलील चौधरी, और इसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

बहनों और भाइयों, वैज्ञानिकों ने एक बंदर को बदलने का फैसला किया। नए बंदर ने जो पहला काम किया वह था सीढ़ी पर चढ़ना। तुरंत अन्य चार बंदरों ने मिलकर उसे पीटा। तो दोस्तों, कई बार मार खाने के बाद नए बंदर ने सीढ़ी पर चढ़ना नहीं सीखा। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्यों उसकी पिटाई हो रही है। तो दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, रिम जिम के तराने लेके आई बरसात। गीतकार शैलेंद्रा, संगीतकार एसडी बर्मन, और इसे गाया है गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने।

बहनों और भाइयों, दूसरे बंदर बदला गया और वही हुआ। पहले बंदर ने दूसरे बंदर की पिटाई में भाग लिया, तीसरे बंदर को बदल दिया गया और पिटाई जारी रही। अब चौथे बंदर बदला गया, पिटाई जारी रही और अंत में पांचवें बंदर को भी बदल दिया गया। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत। ये चांद सा रोशन चेहरा फिल्म कश्मीर की कली, गीतकार HS बिहारी, संगीतकार OP नैयर और इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

बहनों और भाइयों, क्या बचा था? पांच बंदरों का एक समूह था जिसे कभी ठंडे पानी की बौछार नहीं मिली, लेकिन सीढ़ी पर चढ़ने वाले किसी भी बंदर को पिटाई जारी रखा। तो दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, गिर गया झुमका, फिल्म जुगनू, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार SD बर्मन, और इसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

तो दोस्तों, अगर बंदरों से पूछना संभव होता, वे सीढ़ी पर चढ़ने वाले बंदरों को क्यों पीटते हैं? मैं शर्त लगा के कहता हूं कि इसका उत्तर होगा, भैया मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस तरह से चीजें यहां की जाती है। क्या यह परिचित लगता है आपको? क्या आपके जीवन में भी ये प्रश्न आया है और ये उत्तर है? तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत। आज उनसे पहली मुलाकात होगी। फिल्म पराया धन, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन, और इसे गाया है किशोर कुमार।

बहनों और भाइयों, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।